से भू तर से बिना जान नहीं, जय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई